तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9850-1246 9850-1254 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज
1: सुन्न मन लाग्यो।
2: समय सापेक्ष प्रसंग, फरक दिन फरक विषय, समय सन्दर्भ, हरेक दिन बिहान 7:30 बजे मात्र रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ज मा समय सन्दर्भ।

कोई का अपना बीते होलन कोई का पर भए आउने जाने चली रन्छ भन्दै मन बुझाए कोई छन आर्मी पुलिस मा ड्यूटी गर्दै होलन हकीमको।

0: नेपालीहरुको मान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल संवत एवं छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा संपूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन शुभचिन्तक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरु र देश विदेश में रहनु भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: देवी कार्की अधिकारी केन्द्रीय सदस्य नेपाल विद्युत कर्मचारी संघ प्रथम उपाध्यक्ष लायन्स क्लब अफ आरम्भ पोखरा चौतारी
2: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हामी हाम्रा इष्ट मित्र शुभचिन्तक तथा सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरु लगायत समस्त देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरुमा सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: गण्डकी उद्योग परिसंघ अध्यक्ष धर्मराज बर्तौला एवं कार्यकारी प्रमुख गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनी प्राली पोखरा।
1: नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयर सदस्य लगानीकर्ता शुभ चिन्तक आफन्तजन लगायत देश विदेश में रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि का लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
4: दुर्वसिंह खड्का अध्यक्ष कुणर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा 13 कुणहर।
2: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग अभिभावक विद्यार्थी भाई बहनी लगायत देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली जनहरुमा सुख शांति सुस्वास्थ्य समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगति को लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शिक्षा सेवी डाक्टर खरिका देवी पराजुली पोखरा महानगरपालिका ढुङ्गेपाटन।
2: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हामी हाम्रा इष्ट मित्र शुभचिन्तक तथा सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरु लगायत समस्त देश विदेश में रहनु भएका नेपालीहरुमा सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: सामाजिक व्यक्तित्व विष्णु पराजुली अध्यक्ष नारी सेवा समिति कास्की।
0: नेपालीहरुको मान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल संवत एवं छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन शुभचिन्तक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरु र देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: विश्वनाथ बराल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मासबार हाल न्यू जर्सी यूएसए।
3: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्तजन लगायत देश विदेश में रहनु भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बुद्धिबहादुर कुँवर अध्यक्ष बुद्ध विशाल बजार व्यवसायी एसोसिएशन।
5: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल संवत र छठ पर्व को पावन अवसर में हामी हाम्रा सम्पूर्ण इष्ट मित्र आफन्तजन ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील व्यक्तित्वहरु र देश विदेश में रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: ब्युटिसियन दीपा गुरुङ दीपा ब्युटी पार्लर पोखरा 15 रामबजार फलेपाटन चोक।